0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
6: रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
7: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

जैसा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक।
2: तौफीक चाचा, ईद मुबारक।
4: आप
2: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
4: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
8: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Cool song.
2: Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
1: कुसुम।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ब्राइन भाई, ईद मुबारक।
2: ईद मुबारक।
3: रफीक चाचा, ईद मुबारक।
4: आप
3: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
4: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: ए, हलो हलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चाचा?
7: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
8: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर।
2: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक. सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडियो

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is
5: Vani Bhanushali.
6: Hey, this is Ileana
7: De Cruz.
8: This is me, Ritik Roshan.
9: Hi, I'm Alia Bhatt.
10: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
11: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

Good morning. You are listening Radio All Over 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show का नाम है Life Must है और आज Saturday है और honestly Saturday का mood भी थोड़ा सा confusing होता है. कुछ लोगों का full working day है, कुछ का half day है और कुछ लोग mentally अभी भी Friday में ही चल रहे होते हैं. और weekend का real purpose क्या होता है? Sleep, Netflix, laundry और adulthood में weekend भी task जैसे बन जाता है. मतलब psychologists बोलते हैं कि weekend सिर्फ body के लिए नहीं होता, brain का reset करने के लिए भी बहुत important होता है. क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में हम कंटिन्यूअसली यू नो ऑन मोड में रहते हैं, जहां पर सब कुछ होता है, ऑफिस चैट, सोशल मीडिया, कॉल्स, एवरीथिंग, पर ब्रेन को पॉज नहीं मिलता. इसीलिए आज का शो भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड वाइब में रहेगा, थोड़ा फुटबॉल, थोड़ा फैशन, थोड़ा साइंस और फुल मस्त कॉन्वर्सेशंस. सो आई विल से कि आई एम प्रीटी श्योर आपका भी फ्राइडे बहुत अच्छा रहा होगा, जैसे कि मेरा रहा. मतलब इट वॉज सो गुड, मैंने बहुत सारी चीजें की. मतलब इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव. मैं हर बार सोचती हूँ कि थोड़ा सा यू नो खुद के लिए टाइम निकालूँ, सलोन जाऊंगी या फिर यू नो अपने बालों के लिए कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट लूंगी. एंड यस्टरडे आई डिड एवरीथिंग. सो आज वो सारी बातें करेंगे. आप मुझे बताओ कि हाउ वाज योर फ्राइडे. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: आई मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे.

0: So you know that FIFA Under 17 World Cup Qatar 2026 जो है वो officially start हो रहा है और क्योंकि यही फ्यूचर सुपरस्टार्स होते हैं, मतलब जो फुटबॉल टूर्नामेंट के एक्साइटमेंट जो है अलग लेवल तक पहुंच जाती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि लास्ट एडिशन में 1 लाख, मतलब मोर देन 1,97,000 फैंस जो है वो मैचेस देखने आए थे और अराउंड 130 ग्लोबल स्काउट्स भी यहाँ पर थे. मतलब एक यंग प्लेयर आज अंडर 17 वर्ल्ड कप में खेल रहा है और कुछ साल बाद सेम प्लेयर वर्ल्ड कप फाइनल में हो सकता है. सो मतलब हर किसी की अपनी एक अलग यू नो उम्मीदें हैं इस मैचेस से. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. कतर ग्रुप ए में पनामा, इजिप्ट, ग्रीस है और इस बार डेब्यू नेशंस भी आ रहे हैं जिसमें रोमानिया, सर्बिया, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे कुछ कंट्रीज हैं. और कतर जो है ग्रेजुअली ग्लोबल यूथ फुटबॉल हब बन रहा है, मतलब वैसे तो है ही बट धीरे धीरे ही अंडर 17 वर्ल्ड कप के साथ क्रेज जो है वो और बढ़ता जा रहा है. वर्ल्ड कप के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली यूज करना स्मार्ट प्लानिंग है और फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी है. वो आपको पता चलेगा जब यही प्लेयर्स यू नो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में खेलेंगे जो अभी अंडर 17 में है. सो आप मुझे बताओ कि आप अपने बच्चों को फुटबॉल के लिए कितना यू नो टाइम निकाल कर देते हैं या फिर कहाँ पर उन्हें यू नो फुटबॉल के क्लासेस के लिए भेजते हैं. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

ईद की रात हो और साथ ही साथ कटारा का फायरवर्क हो, मतलब ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 27th मई से 29th मई तक कटारा में ईद फायरवर्क होने वाला है और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये टोटली फ्री होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो कतर में फायरवर्क का एटमॉस्फेयर ना काफी सिनेमैटिक होता है, फैमिलीज, किड्स, कारक चाय और फिर वो जो समुद्र से आती हवा, मतलब फुल वाइब होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कटारा सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कल्चरल हार्टबीट जैसा फील होता है वहाँ पे। और ईद सेलिब्रेशन मिडल ईस्ट में सिर्फ फेस्टिव नहीं होता, मतलब पूरा कम्युनिटी फीलिंग होती है। पीपल जो है, मतलब लोग पूरा तैयार होते हैं, लेट नाइट आउटिंग के लिए निकलते हैं, फैमिली डिनर्स तो कंपल्सरी है और फायरवर्क का मैजिक उसमें थोड़ा सा और आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है। सो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और बड़े भी सीक्रेटली एक्साइटेड तो होते हैं। सो अभी प्लान कर लेना, दिस 27th to 29th आप किसी एक दिन तो जरूर टाइम निकाल कर जाइए, और अगर तीनों दिन जा सकते हैं तो बेस्ट है ही। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तौफिक चाचा, ईद मुबारक।
1: आप
0: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
1: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
2: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
3: हेलो हेलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चाचा?
4: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
5: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिन उमरान। कॉन्टैक्ट 310-999-45।
2: गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव। डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: So, आज की किताब उन लोगों के लिए है जो स्टोरीज को फील करते हैं. किताब का नाम है द शेडो ऑफ द विंड. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.
1: Okay. Book in focus with मुस्कान.
0: So, ये इंटरनेशनल कल्ट बेस्ट सेलर है और ये बुक रीडर्स के लिए लव लेटर जैसा फील होती है. स्टोरी बार्सिलोना सिटी में सेट है और एक मिस्टीरियस फॉरगॉटन बुक से स्टार्ट होती है. फिर धीरे धीरे मिस्ट्री, रोमांस, सीक्रेट, इमोशन सब कुछ धीरे धीरे निकल कर आते हैं. सब ओपन होने लगता है और किताब का एटमोसफेयर धीरे धीरे मैजिकल लगता है. मतलब रेनी स्ट्रीट्स, ओल्ड लाइब्रेरीज, हिडन स्टोरीज, फुल सिनेमैटिक वाइब. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब को ग्लोबली मिलियंस ऑफ कॉपीज है इसकी बिक चुकी है ऑलरेडी. अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है देन यू शुड ऑल्सो यू नो चेक आउट. आपको इसका PDF भी मिल जाएगा बहुत इजीली. द शेडो ऑफ द विंड किताब का नाम है. और ये जो बुक है इसकी अगर मैं बात करूँ तो रीडर्स स्पेशली उसकी राइटिंग स्टाइल्स के फैन हैं. मतलब लोगों को लगता है कि ये राइटिंग ना हर कोई नहीं लिख सकता, एक लव लेटर जैसी राइटिंग है. सो बुक के अंदर भी बुक की स्टोरीज ही होती है और दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस नॉवल. सो यू कैन चेक आउट. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
2: Radio

सो क्या लगता है आपको, मतलब लखनऊ बाजी मारेगा या फिर पंजाब आज टॉप फोर में पहुंच जाएगा? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई अब नंबर बता देती हूँ पहले तो, दिस इज 3311063 व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो वॉइस नोट भी भेज सकते हो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो। सो बेसिकली इन दोनों में से कुछ एक होने वाला है क्योंकि आज शाम को मैच है लखनऊ और पंजाब के बीच में। कल के मैच की बात करूं तो ये था हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु। हैदराबाद ने मैच को जीता और काफी बड़े डिफरेंस से जीता। हैदराबाद के जो रन थे वो थे 255 चार विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और बेंगलुरु ने बनाए सिर्फ 200 चार विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। सो आज प्लेऑफ की उम्मीदें जो है वो जिंदा रखने उतरेगी पंजाब, और लखनऊ को टूर्नामेंट में चार बार ऑलरेडी हरा चुकी है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, आप मुझे बताओ अपनी फेवरेट टीम के बारे में सेम नंबर पे 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टेट ट्यून जियो बिंदास।

0: सो हम बात करते हैं आज के मैच की, विच इज यू नो पंजाब वर्सेस लखनऊ. सो अगर मैं बात करूं दोनों ही टीम की, तो मैच लखनऊ के स्टेडियम में होने वाला है, मतलब उनके होम ग्राउंड पे आज शाम को. सो पंजाब के लिए जो मुकाबला है ये बिल्कुल वैसा ही है कि मतलब या तो जीतोगे या हारोगे, मतलब या तो आप टॉप फोर में जाओगे या नहीं जाओगे. पहले हाफ में 7 में से 6 मैच जीतने वाली टीम लगातार 6 जो मैच थे बाद में हार चुकी है. पंजाब को लखनऊ के खिलाफ जीत के बाद संडे को बाकी मैचेस के जो रिजल्ट होंगे उन पर डिपेंड करेगा, मतलब कल के जो मैचेस होंगे. और दूसरी तरफ लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. सो वील सी कि आज क्या होने वाला. लखनऊ ने 3 और पंजाब ने 4 मैचेस जीते हैं. एक मैच टाई हुआ था, दोनों के बीच में 7 मैचेस हुए टोटल. और आज के मैच में क्या होगा ये तो विद टाइम ही पता चलेगा. सो दोनों के प्लेयर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, बट विल सी कि क्या होता है. आप मुझे अपनी फेवरेट टीम के बारे में जरूर बताना. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
0: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेकुलर

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कांस को अटेंड करते हैं, बट ऐश्वर्या राय सिर्फ कांस को अटेंड नहीं करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। 2002 में जब देवदास की स्क्रीनिंग कांस में हुई थी, तब ऐश्वर्या राय पहली बार कांस में गई थी विद येलो साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी रेड कार्पेट पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब जब उनको दोबारा से इस साल मतलब 2026 में कांस पे देखा गया, तो मुझे वो सारी पुरानी चीजें ना याद आने लगी, क्योंकि इंडियन फैशन ग्लोबल स्टेज पर कॉन्फिडेंटली स्टैंड कर रहा था उस टाइम पर, और तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऐश्वर्या राय कांस का मेजर टॉकिंग पॉइंट बनी रही है। कभी साड़ी, कभी ड्रामेटिक गाउन, कभी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, और इस बार सफायर टोन्ड गाउन जो कि काफी वायरल हो रहा है। प्लस आराध्या का वो प्रेजेंस भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उनका अनऑफिशियल नेक्स्ट जनरेशन अपीयरेंस जो है वो आ चुका है। कांस सेल्फ मतलब फिल्म फेस्टिवल तो रहा नहीं, ग्लोबल इमेज प्लेटफॉर्म बन गया है। और ऐश्वर्या का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? ऑफकोर्स कंसिस्टेंसी, 20+ ईयर्स उसके बाद भी लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर यू नो वहां पर आती है हर साल। और इस बार उनकी बेटी आराध्या के साथ वो वहां पर गई है, शी वॉज वेयरिंग रेड सम ड्रेस एंड बहुत ही प्यारी लग रही थी। एवरीबडी वॉज सेइंग कि वो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। सो अगर अभी तक आपने पिक्चर्स नहीं देखे, गो एंड चेक आउट। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

मतलब कल फ्राइडे था तो उसका इस्तेमाल कहीं तो करना ही था, तो मैंने भी नेटफ्लिक्स पर देसी ब्लिंग देखना शुरू किया। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अगर आपको रिच पीपल ड्रामा पसंद है तो देसी ब्लिंग आपके लिए फुल एंटरटेनमेंट है। नेटफ्लिक्स का ये शो बेसिकली लग्जरी ड्रामा और कियोस्क के बीच में आपको पूरा मिल जाएगा, एवरीथिंग एक्स्ट्रा। और ऑनेस्टली शो देखकर कभी कभी लगता है कि ये रियलिटी है या सिर्फ इंस्टाग्राम रील चल रही है। मतलब कास्ट अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल शो करती है, डिजाइनर शॉपिंग, लग्जरी पार्टीज, गॉसिप, रिलेशनशिप ड्रामा, इमोशनल फ्लाइट्स, मतलब यही सब होने वाला है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि हर कोई इतना रेडी हर रोज कैसे हो सकता है। मतलब जब मैं इसके फनी रिएक्शंस पढ़ रही थी, रिव्यूज पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि क्या चल रहा है। मतलब किसी किसी को ये पसंद आया और कुछ लोग इसे बहुत हेट कर रहे हैं और कुछ मतलब लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बस जस्ट टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस सीक्रेटली रिच पीपल प्रॉब्लम्स देखना एंजॉय करती है, ऐसा मुझे लगता है। सो इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इसे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। अगर आप इसके व्यूज़ देखोगे तो आपको करोड़ों लोग ऑलरेडी शो को देख चुके हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसका ग्लैम मेंटेन करना भी मतलब फुल टाइम जॉब है। जो ये शो आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, मतलब मैं तो नहीं कर सकती। अगर आपने ये शो का पहला एपिसोड देखा है तो आपको पूरा शो समझ आ गया होगा। 3311063 is my number. आप मुझे बताओ कि आपने अभी तक देसी ब्लिंग ऑन नेटफ्लिक्स देखा। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

जब मैं छोटी थी ना तो मुझे हमेशा से ना साइंस पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, पर मुझे समझ बहुत कम आता था. मुझे लगता था कि ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पर धीरे धीरे आई ट्राइड. फिर मुझे समझ में आया कि एरोस्पेस में अगर मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना, फिर फेल होना, फिर इंप्रूव करना और फिर रिपीट करना. और ऐसा ही कुछ हुआ है कल भी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. भाई, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट और उसका लेटेस्ट लॉन्च तो था, वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा. सो इट वॉज स्टारशिप V3 वर्जन जो टेक्सास से लॉन्च हुआ था. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेस लॉन्चेस में फेलियर बहुत ही नॉर्मल होते हैं, और एक्चुअली एरोस्पेस इंडस्ट्री का ये रूल ही है कि टेस्ट करो, फेल हो जाओ, फिर इंप्रूव करो, फिर रिपीट करो. सो जब आपका गोल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तब आपको ये सब चीज़ें बार बार ध्यान रखनी पड़ती हैं. सो ह्यूमन सिविलाइजेशन का मल्टी प्लानिटरी उसे बनाना चाहता है स्पेसएक्स. और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि यार रॉकेट साइंस में स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी मैसिव इफेक्ट क्रिएट करती है. एक्सट्रीम हीट हो गए तो प्रॉब्लम है, फ्यूल प्रेशर तो प्रॉब्लम है, ये सब टाइमिंग्स वगैरह इसमें बहुत मैटर करती है. सो एवरीथिंग इज़ यू नो बेस्ड ऑन टाइमिंग एंड एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मैं तो थी कॉमर्स की स्टूडेंट, साइंस पढ़ना मुझे पसंद था, पर उसमें इतना डिफिकल्ट हो जाता था मेरे लिए समटाइम्स कि मुझे मैथ्स और साइंस समझ में आना बंद हो जाता था. सो आप मुझे बताओ कि आपने 11th में और जब सब्जेक्ट लेना होता है तब कौन सा सब्जेक्ट लिया था, और आप जब ऐसे रॉकेट्स की बात होती है और रॉकेट साइंस की बात होती है और साइंस की बात होती है तो क्या आपको इतना इजीली समझ में आ जाती हैं बातें. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: अब आ चुकी है गर्मियां। अगर आप एसी के साथ थोड़ा सा फैन ऑफ कर देते हो तो शायद आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, 26 डिग्री पे अगर आप एसी चलाते हो प्लस फैन को आप कॉम्बिनेशन में रखते हो तो रूम जो है वो बेटर कूल फील कर सकता है, क्योंकि कंपेयर्ड टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एयर फ्लो। रीजन, एयर सर्कुलेशन। फैन कूल एयर को इवेंचुअली स्प्रेड करता है और बॉडी को फास्टर कूलिंग फील करवाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फैन प्लस मॉडरेट एसी का सेटिंग अगर आप रखते हो तो बेटर कंफर्ट, लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल और एफिशिएंट कूलिंग जो है वो होती है। और गल्फ समर्स में ये हैक ना काफी यूजफुल है। तो अगर आपके पास फैन है, क्योंकि मेरे रूम में तो फैन है ही नहीं, सो अगर आपके पास कोई फैन है या साइड फैन या टेबल फैन भी है तो आप उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकते हो, बिकॉज एसी का रिमोट कतर में इमोशनल सपोर्ट डिवाइस की तरह काम करता है। सो ह्यूमन बॉडी एक्चुअली मूविंग एयर को ज्यादा कूलिंग परसीव करती है, ऐसा हम लोगों को मतलब ऐसा फील होता है। सो इसीलिए फैन जो है वो कंफर्ट इंक्रीज कर देता है। सो अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके देख लो। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

सो आप ना जिस पोजीशन में सोते हो वे फ्यूचर बॉडी पेन डिसाइड कर सकता है. डॉक्टर्स जनरली स्टमक स्लीपिंग को लीस्ट रिकमेंडेड स्लीपिंग पोजीशन मानते हैं. इसका रीजन क्या है? नेक ऑकवर्ड एंगल में रहता है और स्पाइन पर अननेसेसरी प्रेशर बहुत पड़ता है. सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है नेक स्टिफनेस, लोअर बैक पेन और शोल्डर डिस्कम्फर्ट. सो अगर आपको लगता है कि आपके सोने के लिए सबसे कंफर्टेबल जो पोजीशन है वो यू नो स्टमक पर है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एक्सपर्ट्स को लगता है कि साइड स्लीपिंग या फिर बैक स्लीपिंग जो है वो बेस्ट होती है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है. स्पेशली साइड स्लीपिंग अगर मैं बात करूं तो बेटर ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग सपोर्ट करती है. अब स्लीप क्वालिटी सिर्फ ड्यूरेशन से डिसाइड नहीं होती, बेसिकली पॉस्चर को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आप साइड स्लीप में हो या फिर बैक स्लीप में हो तो आपको ज़्यादा आराम मिलता है और आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रेस्ट कर पाती है. सो एडल्टहुड का ना फनीएस्ट पेन पता है क्या है? गलत सोने से बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है और मतलब इतना बुरा लगता है अगला दिन ऑफिस में ना, बिल्कुल मतलब काम करने का मन ही नहीं करता. तो इट्स बेटर कि आप सारी चीज़ें पहले से ही ध्यान रखो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

कब आपसे बातें करते करते मैं अपने लास्ट थॉट तक पहुंच जाती हूँ पता ही नहीं चलता। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है। और आज का लास्ट थॉट बताती हूँ, कभी कभी ना प्रोडक्टिव वीकेंड का मतलब होता है आउटिंग बिल्कुल नहीं, एक्स्ट्रा स्लीप, फैमिली टाइम, चाय या बस कुछ ना करना। जैसे कि कल मैंने किया, आई सॉ नेटफ्लिक्स पे देसी ब्लिंग, फिर मैंने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, मैं अच्छे से सलोन में गई, अच्छा सा यू नो टाइम स्पेंड किया, प्लस मैंने सोचा कि भाई बाहर निकल के एक अच्छी सी कॉफी पीकर आती हूँ, और मैंने वो भी किया। पर मैंने शॉपिंग से खुद को बहुत दूर रखा, जो भी घर में ग्रोसरी चाहिए थी वो मैंने मस्त घर पे बैठ के एक एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दी और सारी चीजें घर पर ही आ गई। सो आज के वर्ल्ड में हम लगातार हसल को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टायर्ड माइंड ना डिजर्व करता है पॉज, और बिल्कुल भी गिल्ट नहीं। सो आज मेरा तो देखो बस यहाँ पे, अब जैसे ही मैं आपसे बातें करूंगी वैसे ही मैं अपने लंच के लिए जाऊंगी और फिर अपने लिए अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगी। सो मेरा टाइम तो हो गया है जाने का, लेकिन कल संडे को सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर हाजिर रहूंगी। और अगर आपका भी आज हाफ डे है या अपने काम से ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं तो घर जाइए, रिलैक्स करिए, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा खुद को हाइड्रेटेड रखिए और खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, बहुत जरूरी है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, जियो विद अस।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: ओलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक.

0: प्यार में।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.

0: Tanisha.
1: Tanisha. आशा था यार जगजीत सिंह साहब की आवाज में. What a beautiful track, यार. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge लेकर आई हूँ जी. मैं और मैं अकेली नहीं आई हूँ.
2: जी हाँ, मैं भी आ चुका हूँ आपको डबल रिचार्ज करने के लिए. आज अपनी बैटरी जितनी भी बची है सारा कुछ हम चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. टाइप सी हो, लाइटनिंग हो, या फिर टाइप बी हो,
1: एनी टाइप
2: कोई भी हो,
1: यस
2: अपने को फर्क नहीं पड़ता.
1: जी हाँ, हो जाएगा
2: भाई. इतना कंटेजियस एनर्जी आपको देंगे कि आप खुद सोचोगे कि इतनी एनर्जी का करें क्या. क्या करें, कहाँ रखें हम.
1: बचा हुआ वीकेंड है, अभी सैटरडे बाकी है यार, वहाँ यूज करें उसे.
2: अगले वीकेंड तक एनर्जी दे देंगे.
1: ओह माय गॉड,
2: आपका हफ्ता ऐसे ऐसे जाएगा.
1: क्या हो गया तुझे,
2: है
1: एनर्जी ड्रिंक पी कर आया तू.
2: नहीं, मैं आज प्रॉपरली पानी पी कर आया हूँ. हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू.
1: इंडीड, और इस गर्मी में तो बहुत इम्पोर्टेंट है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: आप अपना ख्याल तो रख रहे हो ना, बताओ मुझे कैसा रहा आपका वीकेंड.
2: और अगर पता चला हमें कि ख्याल नहीं रख रहे तो देखना तनिशा मैडम.
1: गलत बात है, ऐसे नहीं चलता. ठीक है,
2: ऐसे नहीं होता.
1: मुझे नंबर बोले देगा.
2: सॉरी मैडम.
1: 3311063 इज द नंबर. मैसेज कीजिए और बताइए क्या हाल चाल है, और सुनिए जरा आने वाले गाने.
3: ले जाए जाने का
1: क्या पता कहाँ ले जाएंगी ये हवाएं.
2: बिल्कुल बिल्कुल. नई दिल्ली.
1: नॉस्टैल्जिया का तड़का फॉर यू. एंड इस गाने पे भी मैंने डांस किया है.
2: कौन सा?
1: मेरा बाबू छेड़.
2: अरे अरे अरे अरे अरे.
1: सारे गाने बस यही बता रहे हैं, आगे बढ़ते जाओ, जो होगा देखा जाएगा मेरी जान.
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है. मगर तनिशा मैडम ने जैसे ही अपने डांस के बारे में बात किया, मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है, वो है नैना. यार वो गाना गुनगुनाओ ना एक बार, मुझे लिरिक्स नहीं पता. दिलजीत एक्चुअली क्या बोलते
1: हैं? नहीं सुनना है हमें वो गाना, हम ये सुनेंगे. और उसके पहले हम सुनेंगे आशिकों की कॉलोनी और रोमियो से. एंड
2: कॉलोनी
1: We've got messages over here.
2: Okay.
1: So, फैजल जी का मैसेज आया है, कह रहे नहीं रख रहे हैं हम अपना ख्याल, एसी खराब है कार का.
2: क्या?
1: अरे यार ऐसे थोड़ी होता है.
2: ठीक कराएं एसी जल्दी जल्दी.
1: जी प्लीज, इस गर्मी में एसी की सख्त जरूरत है.
2: बिल्कुल.
1: एंड मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया है, वेलकम सुदेव. वही तो, तनिशा के शो में सुदेव ना आए ऐसे हो नहीं सकता.
2: वो बाकी दिन तो वही होता है. बट थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू, थैंक यू. और संतु जी का भी मैसेज आया, गुड आफ्टरनून जी.
2: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून. और मैं बता दूं, आप लोग जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि क्या क्या किया आपने इस वीकेंड में. और देखिए अब अगले वीकेंड जो है बहुत स्पेशल चीजें होने वाली हैं.
1: exactly.
2: ईद आने वाली है, तो तैयारियां कैसी चल रही है सब बताइए हमें 3311063 पर. फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास
2: मेरी जान.
4: कहिए

0: अरिजीत सिंह की आवाज में जब हैरी मेट सेजल मूवी से हवाई ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा है आपके साथ और मेरे साथ है सुदेव इस वक्त. ऑलरेडी चार्ट चल रहा है.
1: बिल्कुल
0: एंड वी हैव गॉट मोर मैसेजेस ओवर हियर सुदेव. वाहब हमें गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं. आपको भी गुड आफ्टरनून जी. और साजिद जी का मैसेज आया है कि हम गए थे कॉर्निश कल. चार घंटे वहां पे स्पेंड किए हैं.
1: अच्छा,
0: तो आई होप मजा आया होगा. बढ़िया रहा होगा वो टाइम.
1: बहुत बढ़िया.
0: और मोहम्मद यूसुफ खान साहब बोल रहे हैं सुदीप आपकी जो ये लास्ट लाइन है ना मेरी जान, ये जो आप इमिटेट करते हैं ना वो सिर्फ तनीषा को ही सूट करता है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
1: ये तो हम भी जानते हैं यो तनीषा को ही सूट करता है. बट मेरा मन करता है बोलने का.
0: कॉपीकैट.
1: यार यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था. ठीक है. कैसे जो नए लोग हैं उनका सोचने का तरीका कितना डिफरेंट होता है. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होता था. मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता था. हमारे लिए बस यूनिफॉर्म था वो सिर्फ साल में दो दिन पहना होता है वो भी फर्स्ट ईयर में.
0: वाओ.
1: उसके बाद से तुम्हें यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है. तुम फॉर्मल ड्रेस में तुम्हें आना होता है हाफ शर्ट और पैंट में शूज के साथ ताकि एक ऑफिस गोइंग डेकोरम जो है तुम्हें उसका एक फील मिले.
0: ओके.
1: ठीक है. अरे प्लानिंग इंजीनियरिंग करते
0: उन्हें क्या पता था.
1: उन्हें क्या पता था कि यहाँ पे हम हैरम पैंट्स पहन के आएंगे. तो हुआ ये कि मैं निकल गया कॉलेज से. मेरे कॉलेज से निकलने के बाद का जो बैच आया
0: जी
1: उन्होंने बोला कि हमें यूनिफॉर्म चाहिए. तो उसके बाद मैं कॉलेज गया एक दो बार. तो उस टाइम पे कोविड था तो स्टूडेंट्स हमें दिखे नहीं. फिर अभी रिसेंटली मैं कॉलेज के कुछ स्टोरीज देख रहा था तो मैंने देखा सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं.
0: वी आल्सो हैड लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स.
1: नहीं बट इसमें चेंज ये है कि बच्चों ने उधर को बोला मैनेजमेंट से कि हमें यूनिफॉर्म चाहिए.
0: इट गेट्स कन्वीनियंट एक्चुअली.
1: ट्रू एक्चुअली या
0: बहुत स्ट्रेस होता है. एंड देन राइट नाउ वी आर वर्किंग तो यू नो हम अपना लाइफस्टाइल फंड कर सकते हैं. उस टाइम पेरेंट्स के ऊपर और प्रेशर कर देते हैं यार कि मम्मी रोज कैसे मैं कपड़े रिपीट करूं.
1: जब
0: ऐसे कुछ स्पेशल हो रहा है या फिर और जब आप हॉस्टल में हो आप उन्हीं लोगों के साथ सराउंडेड हो यू माइट नॉट हैव दैट थिंग. बट गर्ल्स यूजुअली फील कि यार अभी तो पहना था चार दिन पहले मैं कैसे आज फिर से पहन लूं टाइप.
1: अच्छा.
0: सो यू नो दैट
1: हम मेंस हॉस्टल में थे जहां पे रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं.
0: ऐसे नहीं बोलते यार.
1: तो हमें ऐसा कभी लगता नहीं था. और दूसरी बात ये कि एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा. एक दिन हुआ ये कि मैं सुबह तैयार होके ना कि मैं जैसे ही अपना कबोर्ड खोलने आया तो मैंने 6 शर्ट्स जो है मेरे 6 शर्ट्स को आयन करके हैंगर में टांग के रख दिया था.
0: एक भी नहीं थी.
1: हैंगर तक नहीं है वहां पे. मैं ऐसा और मैं देख रहा हूँ कि मेरे शर्ट इधर उधर चल रहे हैं इधर उधर कोई पहन के जा. मेरे पास शर्ट नहीं था पहनने के लिए. सोच के देखो.
0: I think ये चीज बॉयज में रहती है. बट गर्ल्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर क्लोथ्स एंड ऑल. एंड यू कैन नॉट रैंडमली जस्ट गो. इवन इफ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स आई वुड स्टिल गो एंड आस्क यार कैन आई टेक दैट फ्रॉम यू.
1: अच्छा.
0: ऐसे
1: अपने में तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब मेरे दोस्त आते थे मेरे साथ रहने के लिए जब मैं रहता था वहां पे काम करते वक्त खुद ना खुद मतलब एक तो मैंने छोड़ दिया रखी थी उन्हें कि भाई कपड़े रखे उठा के चाहिए तो ले आए. मतलब कुछ ड्रेसेस छोड़ के कुछ ड्रेस में हटा के रखता हूँ ये नहीं छूना भाई. इसमें हाथ लगाया फिर हमारे बीच का बंधन बहुत बुरा हो जाएगा. तो फिर मेरे कपड़े ज्यादा वो पहनते भी नहीं थे क्योंकि वो लोग पतले लोग थे तो उनके जैसे दो उसके अंदर आ जाते थे.
0: अच्छा.
1: तो ऐसा.
0: बट व्हाट फन डेज यार कॉलेज टाइम. इट वाज टू मच फन.
1: है ना वो लगता है तुम क्योंकि तुम्हें तुम्हारी आंखों में चमक होती है रोशनी होती है कि भाई हम दुनिया बदल देंगे जिंदगी बदल देंगे. फिर कॉलेज के बाहर मैंने मुझे याद है
0: तुम खुद बदल जाते हो.
1: लास्ट डे था मेरा मैंने यही बोला था कि इन चार दीवारों के भीतर के 4 साल जो है वहां पे आते वक्त मुझे लगा था कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता मगर जाते वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है.
0: ट्रू. सबका यही हाल होता है यार.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: अब इतनी नॉस्टैल्जिया में हम पहुंच चुके हैं तो एक गाना भी वैसे ही चला देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बंदास.
1: मेरी जान.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive
7: Recharge. In association with
8: Homes Are Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

Tanisha. कुमार सानू साहब की आवाज में परदेश मूवी से बहुत सुंदर गाना ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनाने वाली हूँ मैं आपको. जरा सुने, खुद के लिए हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए, छोटा सोचने के लिए तो लोग हैं ना. समझ रहे हो कि नहीं बात को? सो नेवर यू नो फील लेस ऑफ योर सेल्फ और अपने लिए कोई भी हार्श या नेगेटिव चीज मत बोलो बिकॉज वो लोगों का काम है. लेट देम डू दैट. हमने अपने लिए हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है सो दैट हम वही अट्रैक्ट करें लाइफ में. और ये जितनी जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे उतना बेहतर है हमारे लिए. ओके मेरी जान. यस, सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो वृंदास.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक्ड टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Paratma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma, Wholesale Market at Selva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Hi, I'm Vivek Anand Oberoi. Radio. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
6: I'm in number one, Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: Olive laga aur ho ja recharge.
9: Olive recharge.
10: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
11: Olive recharge.
12: With Homesar Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
13: Commercial Bank, we are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Denisha. Denisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha ke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par aur सुदेव एक इंस्टाग्राम पे नया अपडेट आ गया फिर से
2: बताइए क्या अपडेट आया है
1: सो नाउ दिस अपडेट इज इंटरेस्टिंग
2: अच्छा
1: इसका नाम है इंस्टाग्राम प्लस
2: ओके
1: एंड यू माइट हैव टू पे फॉर दिस
2: या मैंने इसके बारे में सुना था जो बीटा वर्जन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज हो रहा है
1: एंड
2: स्टोरीज हम 48 आवर्स तक डाल सकते हैं
1: द ऑप्शंस आर क्या क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं आपको आप लोगों की स्टोरी एनोनिमसली देख सकते हैं
2: यस यस
1: सो इफ यू आर स्टॉकिंग समबडी इवन फ्रॉम योर फेक अकाउंट यू डोंट हैव टू शो दैट
2: या
1: यू कैन नो किस किस ने आपकी स्टोरी रीवॉच करी है कितनी बार
2: यस
1: अब ये तो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया है देखो अगर आप अपने क्रश की स्टोरी चेक कर रहे हो दिन में 50 बार उन्हें पता चल जाएगा
2: बट मेक श्योर करना कि क्रश इंस्टाग्राम प्लस ना ले
1: या एंड 48 आवर्स वाला जो एक्सटेंशन है वो आपने बताया देन यू कैन पुट योर स्टोरी इन स्पॉटलाइट सो दैट उसको हायर रीच मिले
2: जी जी जी
1: एंड कस्टम लिस्ट बना सकते हो आप उसमें
2: किस को भी हाँ
1: एग्जैक्टली एंड सर्च ऑप्शन भी है आपको स्टोरी व्यूज में
2: अच्छा कि
1: इफ यू वांट टू सर्च कि किसने देखा है
2: यार ये तो मैं बहुत टाइम से चाहता था बट इन्होंने इसमें पैसे लगा दिया मतलब यही है ना कि कैपिटलिज्म तुम्हारे हर एक नीड को कमोडिफाई कर देता है
1: हाँ स्टोरी डालने का कई बार पर्पस यही होता है टारगेटेड टू वन पर्सन
2: बेटा देख ले बट यार ऐसा देखिए देखते हैं कितने लोग इंस्टाग्राम प्लस खरीदेंगे और आपके पास मौका आएगा इंस्टाग्राम प्लस लेने का आप लेंगे
1: बट आई फील इंस्टाग्राम बहुत फ्री है भाई
2: हाँ काफी
1: रोज नए अपडेट निकाल के ले आ रहे हैं क्या चल रहा है इनका
2: काम नहीं हो रहा ना इनका कुछ
1: एक तो इंस्टेंट आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल
2: हाँ मैं यूज भी नहीं करता छोड़ दिया मैंने बट फिलहाल आप बताइए कि अगर आप मौका मिलेगा इंस्टाग्राम प्लस को यूज करने का आप वो मौका यूज करेंगे नहीं करेंगे 3311063 पर टेक्स्ट करके बताइए ऑडियो नोट भेज के बताइए फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास
2: मेरी जान
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: तनीषा
1: टैक्सी नंबर 9211 से केके और सुनिधि चौहान की आवाज में एक नजर में भी प्यार होता है।
2: बिल्कुल,
1: मैंने और सुदेव ने तो बिल्कुल सुना ही होगा।
2: मैंने हर नजर में सुना है। मैं हर नजर में प्यार कर बैठता हूँ,
1: पता
2: है, आंखें बंद कर ही घूमता आजकल।
1: अच्छा करते हो,
2: है ना।
1: तनीषा और सुदेव के साथ यहाँ वाले बीच और चल रहा है यहाँ पर, और वक्त हो गया है। आज तू मेरे हाथ आया है बेटे, ऐसे कैसे छोड़ूंगी।
2: बहुत अच्छा लगा आप लोगों से।
1: But I think इसका आंसर तुझे पता होगा।
2: Okay.
1: So the question today is, what do you call guards standing outside Samsung store? If you know, don't give the answer. Do you know?
2: I know.
1: Okay, don't say that.
2: G से शुरू होता है।
1: हाँ, तो don't say that.
2: एक और G से वर्ड आता है।
1: You have to tell me 3311-1063 पर बताएं मुझे, what do you call the guards standing outside Samsung stores? And आने वाले गाने सुनेंगे जरा, क्या कमाल है।
3: क्या तुम लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो।
1: ये मैं आईने में देख के खुद को बोल लेती हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलना चाहिए, हर दिन बोलना चाहिए,
1: है ना।
3: तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
1: हाँ जी, सो ये कमाल के गाने आने वाले, और फिलहाल सुनते हैं TMO, Ash King और सुनिधि चौहान की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एंड जुबिन दास
2: मेरी जान।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Tanisha aur Sudev hain aapke saath. All recharge chal raha hai yahan par. Aur Liam James ka sawal pucha tha.
2: Ji.
1: Ki what do you call guards standing outside Samsung stores?
2: Ji haan, hamare paas bhar bhar ke jawab aaye hain aur khushi ki baat ye hai ki sab ne sahi jawab diya hai.
1: Aur
2: bahut badhiya clue jo hai maine diya tha.
1: Haan, cheating ho gayi hai.
2: और जी का एक वर्ड भी आता है.
1: आंसर लीक हो गया है यहाँ पे.
2: आंसर कुछ लीक नहीं हुआ. ये कोई एग्जाम थोड़े ना कॉम्पिटिटिव जो लीक हो जाएगा ऐसे ही.
1: नहीं पर यू नो
2: बढ़िया आंसर है
1: Guardians of Galaxy.
2: Yes, बिल्कुल सही जवाब दिया है सब लोगों ने. तो आपके लिए तालियां. बहुत बढ़िया.
1: थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर लेमनेस.
2: पार्टिसिपेट कर करके आप अपना भी लेवल गिरा रहे.
1: बढ़ रहा है ठीक है.
2: हाँ माइनस से ना
1: नहीं काफी पॉजिटिवली.
2: जी जी जी जी.
1: वेल सेंडिंग इश्क का फीवर.
2: हाँ
1: ओनली फॉर यू. ओनली ऑन
2: रेडियो
1: 106.3 FM. जी बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: Tanisha. बादशाह और विशाल डिडलानी की आवाज में नमस्ते इंग्लैंड से भरे बाजार में तो अभी आप बिल्कुल नहीं निकल सकते हो क्योंकि भयंकर धूप हो रही है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ और मेरे साथ सुदेव है इस वक्त। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर।
2: जी हाँ, यहाँ पे सोचा थोड़ा रिचार्ज हो जाते हैं हम तनिषा मैडम के साथ बैठकर। थोड़ी देर से रिचार्ज हो ही रहे हैं। रिचार्ज से याद आया, 80% से ऊपर अपनी बैटरी को चार्ज मत करना और 20 के नीचे जाने मत देना। ऑप्टिमम बैटरी यूसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
1: ओके।
2: और टेक्नोलॉजी की बात कर ही दिया तो एक और खबर हम सुनाना चाहेंगे आपको।
1: एग्जैक्टली, कब से हमें डरा रहे हैं कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, हमारी नौकरियां ले लेगा।
2: बिल्कुल,
1: ले भी ली थी
2: हाँ,
1: पर फिर फायर कर दिया।
2: अरे बेचारा एआई। यार मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर लगा लो एक कंपनी में एआई को हायर करते हैं, एआई में सब करता है, एआई को डांटेंगे कैसे?
1: Exactly.
2: इंसान को तो डांट भी सकते हैं, कैसे इंसान हो तुम, दिमाग नहीं है तुम में, ये हो वो हो, तीन चार बातें सुना सकते हैं, मॉरली डाउन कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली हम उसे इम्पैक्ट दे सकते हैं, एआई के साथ क्या करोगे?
1: या और आप उसे डांटोगे भी तो वो आपको उसका भी जवाब देगा।
2: हाँ,
1: यू कांट स्टॉप दैट।
2: वही एक चीज है। और हमें मिला है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने,
1: इट्स अ कॉफी चेन,
2: या
1: अपने हम सबको उसकी कॉफी बहुत पसंद है,
2: मुझे नहीं क्योंकि पी नहीं,
1: इट्स ओवरहाइप्ड।
2: जी हाँ, नाम गलत लिखते हैं वैसे वो अपने कप्स में लोगों का, अब जिन्हें पता है उन्हें पता है। तो उन्होंने अपने इन्वेंट्री को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए बैकएंड में एक एआई को हायर किया था और लोगों को निकाल दिया था। उन्होंने सोचा कि भाई तीन चार लोगों को निकाल देंगे, एआई को रख लेंगे, पैसा ही पैसे छापेंगे, उसके साथ साथ काम आसानी से हो जाएगा। मगर एआई दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे।
1: उसने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि वो मिल्क के टाइप्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया।
2: जी,
1: सो दे हैड टू नाउ फायर द एआई, बेसिकली रिटायर द एआई एंड कम बैक टू ह्यूमन स्टाफ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कि एआई आएगा, बहुत सारी चीजें आसान कर देगा हमारे लिए, मगर इंसान की कीमत को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। इंसानियत को एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता।
1: एग्जैक्टली, जो एफर्ट और हार्डवर्क इंसान लगाता है वो एआई नहीं लगा पाएगा।
2: और यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगा, जिस दिन अगर एआई को कॉन्शियसनेस मिल गई तो फिर गाना प्ले करते हम आगे बढ़ते हैं।
1: सुन रहे रेडियो ऑल, जियो बिंदास
2: मेरी जान।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: रफिक चाचा ईद मुबारक
4: आप
3: चाचा मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को
4: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
5: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
6: ए हेलो हेलो तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
8: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Hi, I'm Divya Datta. And you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
7: I'm in number one, Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
9: Only laga aur ho ja recharge.
10: Olive Recharge. Tanisha ke saath.
11: Olive Recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
12: In association with
13: Homes Are Us, we complete your home.
14: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
15: Commercial Bank, we are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा।
1: नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में बादशाह मूवी से मेरे रश के कमर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा है आपके साथ और मेरे साथ है सुदेव इस वक्त ऑलिवरी चार्ज पर।
2: जी पूछिए तनिषा, क्या सवाल है आपका? हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं।
1: सवाल नहीं है, ज्ञान देना चाहती हूँ।
2: अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ गाइस, थैंक यू।
1: सो इंग्लिश का एक रूल विच वी अनोइंगली फॉलो बट वी नेवर क्वेश्चन्ड इट बिकॉज हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया।
2: ओके,
1: सो इफ यू हैव एवर, आई डोंट नो,
2: इंग्लिश इज इट ब्रिटिश इंग्लिश और
1: मे आई
2: या यू मे,
1: क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी वर्ड में अगर क्यू आ रहा है,
2: ओके,
1: इट नेवर कम्स अलोन, लाइक उसके आगे हमेशा यू होता है।
2: ओके,
1: एनी स्पेलिंग यू पिक, इवन इफ इट इज इन द स्टार्ट और इन द सेंटर, इट इज ऑलवेज देयर, क्यू के बाद यू इज इम्पॉर्टेंट।
2: कुड यू गिव मी सम एग्जांपल्स?
1: देयर्स अ क्वेश्चन इज एन एग्जांपल,
2: ओके,
1: देन देयर इज इक्वल,
2: ओके,
1: इक्विपमेंट,
2: ओके,
1: सीक्वेंस,
2: okay,
1: squid,
2: okay,
1: any word you pick, उसमें अगर Q आ रहा है तो उसके बाद U होगा ही।
2: Okay, that is true.
1: Yeah.
2: सही बात बोली आपने। Yeah. ऐसा क्यों होता है?
1: That's just a rule. Yeah, I think it's for the pronunciation, for the better pronunciation of the word, letter.
2: Okay.
1: Maybe, but it is just there, and we all have been following it blindly. Never noticed that, okay, something like that exists.
2: Well, English is a funny language.
1: It is. And?
2: Yes.
1: MT से एक ही word है जो end होता है और कोई word नहीं है.
2: Okay.
1: कौन सा है?
2: Yeah,
1: dreamt,
2: you're right.
1: Dreamt is the only word. Yeah.
2: Yes, dreamt. Wow.
1: So, yeah.
2: ये डिक्शनरी खा रहे हो लगता है आपको? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज।
1: मैं कुछ एलीट अकाउंट्स पे पहुंच गई हूँ इंस्टाग्राम में, जहाँ से मुझे एलीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
2: मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप तो अभी भी विक्टोरियन एरा से बाहर आए नहीं हो।
1: थैंक यू सो मच।
2: ऑन
1: दैट नोट,
2: थैंक यू सो मच।
1: ऑन दैट नोट, सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, बॉम्बे वाइकिंग्स से वो चली।
2: बाय दैट टाइम आई विल हैव सम बोल ऑफ वॉर।
1: या श्योर, स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास
2: मेरी जान।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: This Eid, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Pay Back is back.
4: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
3: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eid.
5: लगा और हो जा रिचार्ज
6: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
5: ऑलिव रिचार्ज
7: इन एसोसिएशन विद
8: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
9: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aur Sudev ke saath hain. Aap Olive Recharge chal rahe hain. Yahan par aur ek important baat batani hai. Bata de ab tu.
2: Bahut hi important baat hai. Seedha jaiye aap Instagram pe Sudev ko search mat kijiye. Radio Olive ko search kijiye.
1: Kyunki hum sab aapko wahi mil jayenge. To aapko alag alag kasht karne ki zarurat nahi hai.
2: Ji bilkul.
1: Go to radioolive.qa. Insta, Facebook, YouTube. Har jagah follow kar lo aur spam kar do bindas. Like maar maar ke.
2: Like maariye aur follow karte waqt ek hi baar use dabana hai. Do baar nahi dabana hai. Nahi hoga. Unfollow ho jayega. और उसके साथ साथ एक और चीज बताना है, आप हमारे जो शो के फीडबैक्स हैं वो हमें दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी इंडिया में हैं या फिर आपके गांव में हैं या फिर कहीं पे भी है वर्ल्ड में, उनको हमारे इस जर्नी के बारे में बता सकते हैं, बोल सकते हैं उनसे कि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? वो भी अपने घर बैठे बैठे
1: ऐप से।
2: ऐप से, तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जहाँ पे भी है जाइए, डाउनलोड कीजिए, उनको भी बताइए इस चीज के बारे में, ताकि सिर्फ गाड़ी में ही नहीं, गाड़ी के बाहर भी हम आपके साथ रहे।
1: जी,
2: ये साथ बना रहना चाहिए। हम साथ साथ हैं।
1: Indeed. सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। जियो बिंदास मेरी जान।

0: Bradmas Wholesale Market at Salwaru. Ample parking, convenient location. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर
2: ऑनली लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
3: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
2: ऑलिव रिचार्ज
4: इन एसोसिएशन विद
5: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: तनिषा अरिजीत सिंह की आवाज में पछताओगे ओनली ऑन रेडियो ऑलम.
2: अरिजीत सिंह की आवाज में पछताओगे या फिर ऐसे ही पछताओगे?
1: वेल, वो तो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: बट या द गाना वाज पछताओगे, द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह, रिटन बाय जानी एंड तनिषा और सुदेव के साथ है इस वक्त. ऑलिव रिचार्ज चल रहा है रेडियो ऑलिव पर.
2: यस, क्या बात, क्या बात.
1: फुल ऐसे आर मेरा रोल ही हो गया है.
2: रोल यार्स.
1: वेल, बातें करते करते पता नहीं चला, जाने का वक्त हो चुका है.
2: अच्छा अच्छा अच्छा.
1: कल मिलेंगे दोपहर 2 बजे
2: बिल्कुल
1: नए वीक में, नए एंथुसियाज्म के साथ. और ये महीने का लास्ट वीक है, राइट? इज इट
2: जो वीक हो रहा है अभी आने वाला है.
1: हाँ जी,
2: कल से.
1: हाँ, और फिर ईद की तैयारियां कैसी चल रही है, हम साथ में मिलके वो सब बातचीत करेंगे विस्तार में एकदम. बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस बिफोर लीविंग कि अगर अभी तक अपने लिए वक्त नहीं निकाला है इस वीकेंड में, तो देयर इज स्टिल टाइम. Please do that for yourself, okay?
2: और यही बात बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं, टाटा बाबाई करते हैं और याद दिलाते हैं कि अपना ख्याल रखना, खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना.
1: और सुन रहे रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास मेरी जान.
0: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है. फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदा।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ कोई रिग्रेट नहीं है, जो वीकेंड पे फन करना था वो जरूर हो गया, लेकिन क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप मुझे बताएंगे आपका आज का दिन कैसा रहा और आपका वीकेंड कैसा रहा। 3311063 पर 4 घंटे अपने होने वाले हैं। हैप्पी सैटरडे। अगर आपका आज सैटरडे भी ऑफ था तो आपका तो हैप्पीएस्ट सैटरडे जो है वो हो गया होगा। और बताओ सब ठीक ठाक है? आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। मुस्कुराना मत भूलिएगा क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: वेलकम है जी, मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हालचाल काल सिमरन कौर है आपके साथ। और देखो यार, बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी से छुट्टी पे निकल गए हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां जो है बहुत सारे लोगों की चालू हो गई है। बीच में एक दो मैनेज करके वो फुल ऑन ईद की वाइब को जो है वो एंजॉय करने वाले बहुत सारे लोग जो है इस बार ईद पे ट्रैवल कर रहे हैं। सो उनका वीकेंड तो सॉर्टेड है, उनकी ईद की लंबी छुट्टियां भी सॉर्टेड है। मेरा वीकेंड कैसा था? थर्सडे मतलब आई वॉज आउट विद फ्रेंड्स और शॉपिंग भी की एंड एक मूवी भी देखी हॉरर वाली जो कि आधी देखी और लेट नाइट मैगी भी खाई जो कि परफेक्ट होती है विद फ्रेंड्स। एंड उसके साथ साथ मैंने फ्राइडे को फुल ऑन नींद ली, ट्राई की मैंने एक फिल्म देखने की जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना, एक मलयालम फिल्म है, हिंदी में ऑफकोर्स मैं देखूंगी, स्टीफन करके वो फिल्म मैंने देखने चालू की। फिर समहाउ मैं बहुत ज्यादा लेजी फील कर रही थी और फिर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया और मैंने खाया। सो या ऑलमोस्ट मेरा लेजी सा जो था वो वीकेंड रहा। और आज सैटरडे है और मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों ने क्या किया 3311063 पर व्हाट्सएप करके बता सकते हो यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: रेडियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

अगर आप बुक लवर हैं तो आपको अभी तक पता होगा, लेकिन somehow आपसे मिस हो गया तो आपके साथ इंटरनेशनल बुक फेयर जो 14 तारीख को स्टार्ट हुआ था आज इसका लास्ट डे है। सो मेक श्योर कि आप 10 बजे तक जो है वो चले जाइए, रात के 10 बजे तक ही ये बुक फेयर जो है वो ओपन है। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना तो मेरे को जाने का मौका जो है वो नहीं लगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। बहुत सारे लोग जो कि बुक लवर है उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है कि बहुत ही बढ़िया वाला जो है ये बुक फेयर है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि यू नो इस बुक फेयर को और भी स्पेशल बना दी। इट्स कंप्लीटली फ्री, यू जस्ट गो एंड वॉच एंड हैव फन। सिमरन गौरयाल के साथ जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
4: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
4: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete.

थोड़ी सी वॉक की थी, ठंडी हवाएं तो यार चल रही है, शाम का मौसम एक्चुअली काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली अच्छा है। मौसम जी मौसम का हाल। जून आने वाला है ब्रो, शाम के टाइम पे फिर भी मौसम अच्छा है, नजर ना लगे यार। जियो बिंदास।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Paratma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

के टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स जो है ना अपने कतर में होते हैं। अगर कोई इवेंट हो रहा है और मुझे जैसे पता लगता है मैं क्विकली आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, बट अगर आपको भी पता लगे, हो सकता है मुझे उसके बारे में ना पता हो, तो आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा। मैं कह रही हूँ सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। सो सेलिब्रेट करिए इस ईद पर आप के पॉप डांस परफॉर्मेंसेस, लाइवली एंटरटेनमेंट, फन फिल्ड एक्टिविटीज, एक्साइटिंग सरप्राइजेस आपकी पूरी फैमिली के लिए, और ये सब कुछ होने वाला है तवर मॉल में। जी हाँ, तवर मॉल में शाम को 6:30 से लेके रात के 8:30 जो है वो 27 मई से लेके 29 मई तक ये सब कुछ होने वाला है। सो शॉपिंग का टाइम भी बहुत बढ़िया होता है ईद के टाइम पे, क्योंकि आपको बहुत सारी जो है ऑफर्स मिल जाती हैं। ऐसे टाइम पे जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो बच्चे जो है वो इसके पॉप परफॉर्मेंस में बिजी रहेंगे, लाइवली एंटरटेनमेंट है, आपका भी फन होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो टावर मॉल में होने वाली है ईद से रिलेटेड। सुंदरी रेडियो ऑलिव कॉर्न, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
4: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
4: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ. जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes R Us. We complete your home.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: गर्मी तो देखो बढ़ रही है, ऐसे टाइम पे बीच लवर्स जो है वो खुश हो जाते हैं, और ईद पे जब छुट्टी है तो फिर बीच पे चले जाओ यार। ईद अल अदा में ये जो फैमिली फेस्टिवल 974 बीच में होने वाला है, जहां पर जो है वो आप फन लाइव शोज देख सकते हैं, किडी जोन, बीच एक्सेस आपको मिलेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिसमें पपेट शो है, मैजिक शो है, बबल शो है, सर्कल शो है, सो बहुत सारी एक्टिविटी किड जोन में होने वाली है, जिसमें फेस पेंटिंग है ना, बलून्स, बीच गेम्स एंड बहुत बड़ी जाइंट्स जो है वो स्क्रीन होने वाली है। सो ये सब कुछ जो है वो ये पेड एक्टिविटीज हैं, है ना। सो मेक श्योर कि अगर आप बीच लवर हैं और आपको ये फन करना है अपनी फैमिली के साथ, तो आप जरूर जाइएगा। 28 से लेकर 29 मई तक 974 बीच में आप जा सकते हैं एंड फन कर सकते हैं, ईद की छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग। सिमरन गौरी आपके साथ, चियो बिंदास।
2: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
3: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
4: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
3: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
5: इब्राहिम भाई
6: ईद मुबारक
5: रफीक चाचा ईद मुबारक
7: आप
5: चाचा मैं इब्राहिम
6: हर जुम्मे रात आता हूँ
5: तुम्हारी बिरयानी खाने को
7: अरे मियां रफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
8: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
9: हेलो हेलो तौफिक चचा की बिरयानी में
6: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां
9: क्यों चचा
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
11: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma, Wholesale Market at Selva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: भाई साहब ये क्यों करने की कोशिश की जा रही है?
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है
0: बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस थर्सडे मैंने लेट नाइट मैगी खाई यार वो टाइम याद आ जाता है जब बहुत सारी मैगी खाई है अब थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ हेल्थ का और ये सारी चीजें नहीं करती हूँ बट यस कभी कभार तो चलता है सो मैगी से अपना इमोशनल कनेक्शन है लेकिन मैगी के साथ जब खिलवाड़ा होते हुए देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है यार ये क्यों चल रहा है सो व्हाट द वायरल में मैं देख रही हूँ एक वायरल पराठा जिसमें मैगी डाल के पराठा बना यार मेरा दिल इतना टूटा ना यार मैगी मैगी प्यार है मैगी इमोशन है और मैगी को तुम पराठे में कैसे डाल सकते हो पराठे में सिर्फ आलू पनीर प्याज ही अच्छे लगते हैं यार तुम मैगी वाला पराठा क्यों बना रहे हो यार ऐसे पराठे के साथ तुम मैगी खा लो यार कुछ भी चल रहा है यार व्हाट द वायरल सिमरन गौरयाव के साथ जियो बिंदास क्या आप ट्राई करेंगे मैगी पराठा सीरियसली मैं जज करूंगी आपको

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर होम.
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: पता मजा पता कब आता है?
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: जी हाँ, मजा तब आता है जब सामने वाला आपके साथ चलाकी करने की कोशिश कर रहा हो और आपको पता है कि सामने वाला आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और चलाकी करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी कुछ लोगों को जब पता लगता है वो भड़क जाते हैं, ये है वो है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग जो है वो देखे होते हैं, वो सामने वाले को चलाकी करने देते हैं, लेकिन एक अपने आप से ये भी वादा करते हैं कि इसकी चलाकी में आएंगे नहीं। वो जितनी मर्जी चलाकी कर ले पर उसकी भावनाओं में आप बहेंगे नहीं। सो यही लाइफ में मुझे लगता है कि हमको ना ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए कि कभी भी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहिए। सामने वाला चलाकी कर रहा है, गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग जो है वो भड़क जाते हैं, यार तू ऐसी सुन सुन दैट, सामने वाले को पता है वो कर रहा है। अब आपको भी पता लग गया तो आप शांत रहो, उसको करने दो जो करना है, लेकिन वो आपको हार्म ना करे, वो आपको किस तरह से पीसफुली कामली जो है वो देखना है वो आप करिए, अपना कंट्रोल मत लूज करिए। क्यों स्ट्रेस लेते हो फिर बाल झड़ेंगे बिना मतलब के, मूड खराब होगा वो अलग से, यार गोभी जैसा मुंह बन जाएगा आपका, फूलों जैसी स्माइल रहनी चाहिए आपके चेहरे पे। जियो बिंदास।

0: कभी आपने स्टोन वॉलिंग के बारे में सुना है?
1: Gen Z.
2: अच्छा
0: जी, सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल। सिमरन कौर है आपके साथ, बात कर रही हूँ स्टोन वॉलिंग के बारे में। स्टोन वॉलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक टॉक्सिक कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो एक बंदे का हो जाता है, जिसमें वो कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है और मतलब वो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, इंगेज नहीं होना चाहता है किसी भी चीज में अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सो वो इमोशनली जो है वो एक वॉल बिल्ड कर लेता है, जिसको स्टोन वॉलिंग जो है वो बोलते हैं, और साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो देता है सामने वाले को, रादर देन टॉकिंग अबाउट दैट जो भी पंगा हुआ है। सो वो प्रॉपर उस चीज को जो है वो शट डाउन कर देता है कि मेरे को तो बात ही नहीं करनी है। तो एक टॉक्सिक बिहेवियर कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो उसका बन जाता है, जिसको स्टोन वॉलिंग बोलते हैं। मुझे पता है, ऐसे जब मैं बात कर रही थी तो बहुत सारे चेहरे आपके भी जहन में आ रहे थे। इट्स ओके, बी केयरफुल। जी गोविंदास।

0: आज के टाइम पे हर कोई पैसा कमाना चाहता है, नंबर वन बनना चाहता है, डिफरेंट करना चाहता है, लेकिन ये तो ज्यादा ही डिफरेंट हो गया यार। याद है ना, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम टिकटॉक पे तो ये रूल करते हैं। सो रिसेंटली अब वो रूल कर रहे हैं अपनी इस बात पे। सो खाबे सोल्ड हिज इमेज राइट्स फॉर 975 US मिलियन टू क्रिएट एआई पावर्ड डिजिटल क्लोन्स। एग्जैक्टली, अब उनकी आवाज, उनका बिहेवियर, उनका फेस जो है वो अब एआई पावर्ड डिजिटल वर्जन में यूज हो सकेगा। एक तरीके से उन्होंने अपने आप को पूरा जो है वो बेच दिया है। अब वो लाइव स्ट्रीम में, एड्स में, ब्रांडेड कॉन्टेंट्स में, मार्केट में दिखेंगे, जो वो है नहीं, लेकिन उनका यूज जो है वो किया जा रहा है क्योंकि उनको खरीदा जा चुका है। सो या क्या आप अपनी लाइफ में इन फ्यूचर क्या खुद को इस तरह से जो है वो सेल करना चाहेंगे, मतलब इमेज के राइट्स जो है वो किसी को देना चाहेंगे? क्योंकि फिर उन सारी चीजों का, आपका फेस का, आपकी आवाज का, आपकी बिहेवियर्स का, सबका यूज हो सकता है, बट आपने वो चीज की नहीं है, बट वो उनकी मर्जी है कि वो किसी तरीके से भी उन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केरी टू मी यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? मे, मे, मे.

जाता है। This is the Rishi Rich Podcast।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रिडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes R Us. We complete.

फिर दोस्तों किधर देगी हाल चाल सिमरन कौर तड़े नाल एंड जबरदस्त इवनिंग्स आप सुन रहे हो. थैंक यू सो मच जो आप इंस्टाग्राम पे हमें यू नो बहुत सारा प्यार देते हो, क्योंकि रेडियो तो वैसे भी आप सुनते ही हो लेकिन हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको बहुत सारा प्यार देते हो. हमारे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट जो है वो करते हो एंड बहुत सारे इवेंट्स जब हम लेके आते हैं तो उसमें भी आप लोग जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन दिखाते हो. सो करा करिए, सोशल मीडिया को फॉलो करिए, इसके भी बहुत सारे अलग से फायदे होते हैं. लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखिए, रेडियो ऑलिव के नाम पर भी बहुत सारे पेजेस जो है वो बन गए हैं. वो कभी कभी आप लोगों को लिंक आते हैं कि क्लिक करिए, अपनी कार्ड की डिटेल्स दीजिए. हम आपसे कभी भी आपके कार्ड की डिटेल्स वगैरह नहीं मांगेंगे और आप किसी को भी अपने कार्ड की डिटेल्स मत दीजिए, ठीक है. जब आप प्राइज जीतते हैं, जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम वहीं पर आपको जो है वो बता देते हैं कि आपने प्राइज जीता है और आपको हमारे ऑफिस आके प्राइस लेना होता है. आपको अपनी कोई भी डिटेल हमको उस तरह से नहीं देनी होती है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अलर्ट भी रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना भी उसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं, मतलब गलत तरीके से. तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है. जियो बिंद.

0: Sala. Radio Olive, your happiness frequency.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के

यार ऐसा वाला इंतजाम तो हमारे ऑफिस में भी होना चाहिए। आई गेस 2016 की बात है, चाइना में एक बंदा था जिसने 365 डेज की फुली पेड लीव जो थी ग्रैंड प्राइज के लकी ड्रॉ में जीती। सो कंपनी का एनुअल डिनर था जिसमें ये जो था वो ड्रॉ हो रहा था, उस बंदे ने 365 डेज की फुली पेड लीव जो थी वो जीत ली और वो अंदा भाई साहब लकी वर्कर जो है वो एक तरीके से बन गया। चाहे तो वो 365 डेज की छुट्टी लेके और अपना अपना पेड लीव जो था वो जीत सकता था, नहीं तो उसको कन्वर्ट करवा सकता था कैश में। माय गॉड, ऐसा वाला सीन आपके और हमारे ऑफिस में हो जाए मजे आ जाए यार। ट्रैवल भी हो जाए, मजे हो जाए, पैसे की भी टेंशन नहीं है, काम भी ना करना पड़े एटलीस्ट अ ईयर। सिमरन गौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو أوليف 106.3 راديو أوليف جيو بنداس 106.3 راديو أوليف جيو بنداس راديو أوليف Your happiness frequency.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: ईद मुबारक.
4: आप
3: चचा? मैं इब्राहिम.
4: हर जुमेरात आता
3: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियां, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: हेलो हेलो, तौफिक चचा की बिरयानी में
8: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
7: क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
10: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीर डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Paratma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Radio Olive.
7: 106.3 Radio Olive.
8: CEO. Bindas.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: सोशल मीडिया का जितना फायदा है ना, उतना ही इसका नुकसान भी हो सकता है। हम सबको आदत है कि जब भी हम फोटो खिंचाते हैं, ज्यादातर ये काम तो मैं भी करती हूँ, वो दो उंगलियां दिखा के विक्ट्री साइन बना के जो है वो हम लोग फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन इसके ऊपर अब ये चीज बोली जा रही है, ये जो हम फोटो खिंचवाते टाइम विक्ट्री साइन बनाते हैं ना, ये बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फिंगर्स जब विजिबल होती है तो आपके हैंड साइंस जो है वो आपके बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को एक्सपोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो नाजायज फायदा उठ सकता है। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी वो दो उंगलियां विक्ट्री साइन बना रहे हैं तो उसको ना बनाइएगा, क्योंकि लोग आजकल किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

तो दोस्तों हो जाए फिर आप लोगों के नाम। चलो फिर सोने की दद की हलचल सतरियाकाल सिमरन कौरे तोड़े नाल चलिए अभी क्विकली नेम गेम खेलने वाली हूँ। अब आप लोगों को मुझे अपने नाम बताने पड़ेंगे क्योंकि मुझे आपके नाम नहीं ना पता, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। 3311063 है मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने नाम लिख के भेजिए। नो हाय, नो हेलो, नो वॉइस नोट, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, यही है रूल। ओके, अभी आपको रूल पता लग गया तो अपना नाम लिख के भेजो। यूसुफ अबरार, नजीम उल्ला, जीवान, शाबाज, तुर्रम, फहीम, उस्मान, असरार, जाकिर, रामनाथ, सैम, मोहम्मद आमिर, सरफराज, दीदार जी, जुनैद, मौशमी, संदेश, साडू, अनिसुर, इब्रार, राहुल, नीलेश, स्मिता, हाजरा, सूरज, चीनू, ओके, विजय, एन, अदील, रोशन, अहमद, रुबीना, नसीम, इमरान, सामी, संधु, निहारिका, सुभाष, रमेश। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए। दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो मुझे बना के भेज सकते हैं।

ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਕੇ ਆਂਸੇ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ जबरदस्त इवनिंग, जबरदस्त चार घंटे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। इसी तरह से साथ दिया करो यार, मजा आता है क्योंकि स्टूडियो में मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, लेकिन मेरी फील रहती है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं। एंड यस ऑफकोर्स आप सुनते भी हैं, आप लोगों के मैसेजेस से पता लगता है, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के इंटरेक्शन से पता लगता है कि आप लोग हमको कितना प्यार देते हैं। सो आज का प्यार चार घंटे पूरे हुए, कल का प्यार कल शाम को 5 बजे जो है वो आपको जबरदस्त इवनिंग्स में फिर से मिलने वाला है। हफ्ते का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये अगला हफ्ता तो आप लोगों के लिए बहुत और भी मजेदार है क्योंकि ईद की छुट्टियां हैं, है ना। सो अभी अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए, खाने पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दिखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: मुबारक। तौफीक चाचा ईद मुबारक।
1: आप
0: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को।
1: अरे मियाँ, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
2: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
3: हेलो हेलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चाचा?
4: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
5: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

चाहे आपकी जिंदगी में आप कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाओ, कितने ही ज्यादा हाइट पे क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन आपकी जिंदगी में ना आपको चाहे ब्लू टिक भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपकी जिंदगी में एक इंसान तो जरूर होगा जो आपको ब्लू टिक मिलने के बाद भी रिप्लाई नहीं करने वाला टाइमली। नहीं, ये वही इंसान है जिसको आप दिन रात कोसते हो, गालियां देते हो, है भाई क्यों रिप्लाई नहीं दिया जाता। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। कैसे हैं आप और कैसा है वो आपका दोस्त जो आपको रिप्लाई नहीं करता टाइमली, खैरियत है उसकी या मार धाड़ के उड़ा दिया। वैसे कहते हैं कि जो दिल के खास रिश्ते होते हैं ना, उनको ऑनलाइन किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लू टिक्स वालों के भी कोई ना कोई ऐसे दोस्त पक्का होते हैं जिनके रिप्लाई का वो भी वेट करते हैं, राइट। तो अब चाहे ब्लू टिक आपको चाहे कितने बड़े, कहते हैं ना आप चाहे कितने बड़े नवाब क्यों ना बन जाओ, लेकिन अपने लिए तो हेयर हो गए वही घर के धोबी। तो बस इसलिए प्यारे रिश्ते जो होते हैं ना, उनको किसी ब्लू टिक या फिर किसी फेम की जरूरत नहीं होती, वो आपसे तब भी प्यार करते हैं और तब भी आपके साथ रहते हैं जब आप कुछ ना हो, और तब तो वो आपके साथ रहते हैं लेकिन गायब गायब से रहते हैं, क्योंकि वो कहता है अरे अब चल तो बिजी है कोई, बस कभी कोई काम हो तो बता दियो, है खड़ा हो यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आपका वो फेस देखा होता है जहाँ पे आपने बहुत डाउन फेस किया होता है, राइट, और वो आपसे दिल से प्यार करते हैं, वो आपको रोता नहीं देख सकते यार। नहीं तो अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसा है तो मुझे जरूर बताना, इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाओ। चलिए आपकी शाम बनाते हैं, बढ़िया से गाने चलाते हैं, आप मुझे बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जो इस शाम को चार चांद लगा दे। इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आप बस फरमाइए जनाब, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। यहाँ से आपकी मुस्कान को मैं भेज रहा हूँ गाने के साथ, जियो बिंदास।

0: अच्छा वैसे लाइफ अपडेट की बात करूं तो जिंदगी में ना स्नैपचैट जैसी होती जा रही है, कुछ पल दिखते हैं और फिर एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं
1: रील वाली रियल कहानी।
0: और रील वाली रियल कहानी में बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जहां मेमोरीज भी एक्सपायर हो जाती हैं, स्नैपचैट। पता है आपको स्नैपचैट का सबसे पहला नाम पिकाबू, हाँ बिल्कुल पिकाबू था, पीक अ बू, पीक ए बी ओ ओ, ये ए अलग है, पीकाबू जैसा एक झलक दिखाई और गायब। शुरुआत सिर्फ एक मस्ती भरे आइडिया से हुई थी, एक ऐसी फोटो शेयरिंग ऐप जहां पिक्स सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखी जाती हैं, लेकिन आज ये ऐप बन गई है एक ग्लोबल हैबिट, हर पल फिल्टर के साथ, हर यार डिसअपीयरिंग मोमेंट के साथ। वैसे मुझे समझ नहीं आता लोग खाने की पीने की कुछ भी कर रहे हैं यार, कहीं वॉक कर रहे हैं, शूज की, मुझे मतलब आज तक इसका सेंस समझ नहीं आया कि लोग एक एक पर्सनल आदमी को भेज के क्या समझाना क्या चाह रहे हैं यार। वैसे शायद इसलिए हम बिना जिंदगी में हर इमोशन को फिल्टर लगाकर दिखाने लग गए हैं ना। स्माइल रियल होती है पर दर्द का हाय हाय है, दर्द का काश कोई स्नैप मैनेज कर देता है ना, नहीं। वैसे तो याद रखिए जिंदगी का हर मोमेंट पिकाबू नहीं होता, कुछ यादें सेव करनी चाहिए दिल में, ना कि सिर्फ स्नैप में। संदरी रेडियो ऑल जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। ये है मिडनाइट लाउंज।

अच्छा सच सच बताना, कभी लाइफ में ट्रेन में वो DDLJ वाला पार्ट तो पक्का करा होगा। मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा कि मतलब अपनी पार्टनर अपने किसी कजन के साथ, फ्रेंड के साथ मजाक मजाक में ही सही, पर वो टन टन टन टन टन टन टन टन खड़ी ट्रेन के साथ किया होगा आई गेस, राइट? चलती हुई ट्रेन के साथ करना भी नहीं चाहिए। वो ट्रेन थी यार, वो मूवी थी। 106.3 रेडियो वॉलिप से आपकी दिल की आवाज़, मैं हूँ RJ आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और आप सुनने जा रहे हैं

जिस प्रेम के एक सीन ने बदल दी फिल्मों की दुनिया, एक हाथ बड़ा और प्यार की कहानी लिख दी गई लाखों दिलों पर। नहीं, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज। और फिल्मी फ्लैशबैक में वो आइकॉनिक प्रेम सीन याद है ना, जहाँ राज अपने हाथ बढ़ाता है और सिमरन दौड़ी दौड़ी उसके हाथ पकड़ लेती है। अब सवाल तो ये है जनाब कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये लेजेंड जो सीन बन चुका है ट्रेन का, वो किस फिल्म से इंस्पायर्ड हुआ था? क्या आपको लगता है वो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हुआ था या कोई पुरानी देसी फिल्म थी जहां से ये सीन मैजिकली लिया गया था? आप बताइए, सोचिए, याद कीजिए। और अगर आपको पता है तो मुझे इंस्टा पे जाके फटाफट बताइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश और आपका सही जवाब। आपका सही जवाब आपको रातों रात मिनटों में फेमस कर सकता है, क्योंकि आपके नाम के साथ एक प्यारा सा गाना। और कहां से आप रेडियो सुन रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, ताकि वो अफसाना मैं इस दुनिया को सुना सकूं। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल ये गाना सरफराज की मोहब्बत के लिए, ओए होए होए होए, क्या लिखते हैं यार लोग, सरफराज की मोहब्बत के लिए चला दीजिए आकाश भाई। अरे यार सरफराज भाई, लो यार आप और आपकी मोहब्बत के लिए जियो बिंदास।

अच्छा, एक हाथ था और एक दौड़ती हुई लड़की, और बीच में थी एक ट्रेन जिसमें सिर्फ प्यार का टिकट चलता है। और प्यार का टिकट चलता है तभी तो वो ट्रेन पकड़ पाई ना, क्योंकि अपने आप ही प्यार से ना एनर्जी मिल जाती है। जिसको प्यार होता है ना, फिर हिम्मत कहाँ से आती है पता नहीं चलता। नहीं, तभी तो वो पैर दौड़ पाए और ट्रेन पकड़ पाए। देखो यार, फिल्म थी, ये सोचना बंद करो, ये सोचो कि वो एक प्यार था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है चीज़। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़। मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में, और आप सुन रहे हैं

और फिल्मी फ्लैशबैक के सवाल का जवाब आ गया है। मैंने पूछा था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो आइकॉनिक ट्रेन सीन किस फिल्म से इंस्पायर था, तो जवाब फतिमा जी ने भेजा है, लंदन से इस वक्त मुझे सुन रही हैं, वैसे पाकिस्तान से हैं, क्या बात है। तो जवाब इन्होंने दिया है कि 1951 की एक फिल्म थी द गर्ल ऑन द ट्रेन से, वहां से इंस्पायर हुए। बिल्कुल यार, क्या बात है, मतलब व्यूअर्स किसी चीज को इतना सोचते हैं, जानते हैं, ये देख के अच्छा लगता है। डीडीएलजे के लवर्स इसे ही कहा जाता है, ट्रू लवर नहीं। टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन। हाँ जी, राज और सिमरन का वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट एक्चुअली इंस्पायर्ड था एक पुरानी इंग्लिश फिल्म, उसके सिमिलर सीन से था, लेकिन डीडीएलजे ने ना उसे इतना ब्यूटीफुली इंडियन स्टाइल में बना दिया कि आज वो सिर्फ एक सीन नहीं है बल्कि एक फील बन चुका है। नहीं, इंडियन सिनेमा का एक फील है, इवन आपकी रेगुलर लाइफ में जब आपको पहली बार किसी से प्यार और आप ओए होए वो खेतों में चले जाओ, ओए होए वही म्यूजिक, ऊपर से ट्रेन, मैंने बोला ना ट्रेन में जाओ और ये वाला आपने एक्शन ना करो, दौड़ते हुए एक फोटो ना खिंचवाई हो, हाथों के साथ वो रील ना बनाई हो, ओए होए होए होए, यही तो मैजिक है सिनेमा का। कहानी कहीं से भी आए पर जब उसे इमोशंस दिल से जुड़ जाते हैं ना उससे, तो वो हमारे बन जाते हैं। नहीं तो याद रखिए, हर फिल्मी पल के पीछे ना होती है एक पुरानी कहानी। बस आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास। अभी फिलहाल फतिमा जी आपके लिए ये गाना, चूंकि आपने रिक्वेस्ट किया है, वो चलाते हैं, जियो बिंदास।

यार हम ह्यूमंस में भी कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ना, मतलब अगर कोई कुछ लिख रहा है वो तीन डॉट्स लिखे आ रही है टाइपिंग के आगे, तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है ना, कितना ज्यादा अनसम्पशंस करने लग जाते हैं इतने टाइम में कि पक्का वो यही लिखेगा, पक्का देखना वो यही लिखेगा, अभी लिख रहा है रुको बता रहा हूँ देखना यही लिखेगा वो, वहीं से जजमेंट स्टार्ट हो जाती है, नहीं क्या लिख रहा होगा, क्या रिप्लाई करेगी, क्या वो डॉट्स गायब हो जाएंगे वापस से, बैक तो नहीं कर देगा तब तक मैं नहीं भेज रहा जब तक वो टाइपिंग कर रहा है, नहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात पलट जाए, मैं तो इस वाली बात को कंप्लीट चाह रहा हूँ अभी वैसे डिजिटल दुनिया में ना कभी कभी टाइपिंग एक इमोशन बन जाता है जो होप भी देता है और हर्ट भी कर देता है, पर याद रखो जो लिखा नहीं गया शायद वो कहना जरूरी नहीं था। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में और ये है डिजिटल टाइम। वैसे मैंने आज लिखा है कि टाइपिंग वो इंसान सबसे ज्यादा करता है जो इंसान अपनी बात को कई बार कॉल पे नहीं कह पाता, जो इंसान आपको सामने से नहीं कह पाता, जब कोई लिखे ना तो उसे ओवरकट मत करना, जब आपको दिख रहा हो सामने वाला कुछ साथ में लिख रहा है चाहे आप कितना ही गुस्सा क्यों ना हो उसको सुन लेना, कई बार हो सकता है कि पहले उसकी बात में कोई और चीज हो, और कहते हैं वैसे भी सामने वाले को पहले बोलने का मौका दो उसके हिसाब से तुम अपनी बात बोलो, रीजन इज हो सकता है या तो वो बात को और संभालना चाह रहा हो, क्या पता वो बात को अपने ऊपर लेकर आपसे माफी मांगना चाह रहा हो और आपका सिर्फ एक ईगोस्टिक नेचर उस बात को बिगाड़ दे, इसलिए बोलने देना चाहिए चाहे वो टाइपिंग की बात हो या फिर आमने सामने की बात हो, उसके बाद सुकून से थोड़ा सा रुक के फिर बोलना चाहिए। आ रहा हूँ वापस, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो बिंदास।

अच्छा, आपने कभी किसी सपने को प्लेटफॉर्म पे खड़ा देखा है? एक ऐसा सपना जिसे रोज स्टेशन की सीटियों के बीच भी अपने अंदाज में जीना था, और वो सपना था महेंद्र सिंह धोनी का। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में, और आप सुनने जा रहे हैं एक रात एक कहानी में महेंद्र सिंह धोनी जी की कहानी। बहुत छोटी सी बात है, जो एक टाइम पर ट्रेन में टिकट चेक करता था, पर आज पूरी दुनिया उसके ट्रॉफीज के लिस्ट चेक करती है, उनके लिफ्ट चेक करती है। यार कितनी ट्रॉफीज उठा चुके हैं वो अब तक। नहीं, रांची का वो सिंपल सा लड़का जिसके लंबे बाल और लंबे सिक्स दोनों ही फेमस हुए, पर सबसे लंबा था उनका जज्बा, कभी ना हारने वाला। धोनी ने हमें सिखाया, बैकग्राउंड छोटा हो सकता है पर ड्रीम्स नहीं, ड्रीम्स बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना वैसा होता चला जाएगा। आज भी जब वो क्रीज पे खड़े होते हैं ना, तो लगता है कि जैसे जिंदगी कह रही हो, टिकट कलेक्टर हो या ट्रॉफी कलेक्टर, अगर ट्रॉफी कलेक्टर हो तो एक और ले जाओ, फर्क सिर्फ हिम्मत का होता है यार, है ना। तो ये थी आज की रात एक कहानी। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, अभी फिलहाल एक गाना यूसुफ जी की रिक्वेस्ट पर चलाने जा रहा हूँ, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। ये है मिडनाइट लाउंज।

जो भी इंसान कहीं अटक जाता है ना, वो एक बड़ी अच्छी चीज बोलना स्टार्ट कर देता है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। नहीं बट ठीक है, पॉजिटिव रहना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी सी अपने एफर्ट्स करना और भी ज्यादा जरूरी है। नहीं, अपना टाइम तभी आएगा जब उसे लाया जाएगा। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। और अब बारी है बिफोर यू स्लीप जानने की कि क्या जरूरी है जानना सोने से पहले। सोने से पहले इंस्टा चलाना जरूरी नहीं है, सोने से पहले हर किसी के मैसेजेस चेक करना भी जरूरी नहीं है। सोने से पहले जरूरी है खुद से ये बात करना कि क्या चीज हमारे लिए खुद के लिए अच्छी है, क्या चीज जानना जरूरी है खुद के लिए। सो बिफोर यू स्लीप में सपने सबके होते हैं, पर उन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उन्हीं का होता है जो रुकते नहीं है। अपना टाइम आएगा बोलना आसान है, पर उससे पहले अपने एफर्ट्स देना सबसे मुश्किल। वो एक्स्ट्रा 10 मिनट प्रैक्टिस के लिए, ओए होए, वो एक और स्टैम्प पेपर के, वो या वो एक और ट्राई जिंदगी के, बस वही डिसाइड करता है कि टाइम किसका आएगा और किसका बस वेट ही रह जाएगा। तो सोने से पहले बस इतना सोच लो, आज मैंने अपना बेस्ट दिया, और अगर नहीं भी दिया तो कल जरूर देना है, क्योंकि कल का अपना टाइम आएगा तभी आएगा जब आज का एफर्ट पूरा होगा। नहीं तो चलिए आ रहा हूँ एक और बार, फिलहाल एक टाइम जरूर आएगा जब आपका दिल कहेगा ये काम बन जाएगा। वैसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दिल की बात शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका दिल ये कहे यही कह जाएगा कि जियो बिंदास। फिलहाल ये गाना जो मैं चलाने जा रहा हूँ, ये श्वेता जी की रिक्वेस्ट पे चलाने जा रहा हूँ। तो श्वेता जी, आपका टाइम फाइनली आ गया गाना सुनने का, और आपका नाम फेमस भी होने जा रहा है। श्वेता जी इंडिया से हैं और बैंगलोर में रहती हैं, और अभी इस समय ये मेरा शो सुन रही हैं, और ये गाना इन्होंने मेरे को कम से कम कहती हैं 3 से 4 बार मैसेज किया था, आज जाके इनकी पुकार फाइनली मैं पूरी कर रहा हूँ। तो चलिए साथ में इंजॉय करते हैं इस लवली से ट्रैक को, जियो बिंदास।

खूबसूरत घर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग रेडियो ओलिव 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

अच्छा, तुम्हारी पहचान तुम्हारा विजिटिंग कार्ड नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे वो कपड़े नहीं, तुम्हारा वो क्लासी लुक नहीं। तुम्हारी पहचान वो है जो तुम्हारी रूह की एक खुशबू है ना, जो तुम तुम्हारे जाने के बाद पीछे छोड़ जाते हो। तुम्हारे जाने के बाद पीछे से क्या कहा जाता है, वो है तुम्हारी पहचान। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज। और अब फिलहाल मैं भी अपनी पहचान बना के यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं जो साथ छोड़ जाए। तो इसलिए यहां से जाने के बाद भी इंस्टाग्राम पे अपनी इस दोस्ती को और गहरा बनाने जा रहा हूं। कैसे? रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। और याद रखिए, कभी भी अकेले नहीं हो आप, तो इसलिए जहां से भी हो मुझको मैसेज करना, पूरा अपने दिल की बात को शेयर करना, बस फिर देखना मेरा जादू। बाकी जादू तो ये भी है कि जाता जाता अपनी लाइब्रेरी से इतने सुंदर गाने लगा के जा रहा हूं ना, जो आपका ये सफर बहुत प्यारा बना देंगे। फिर चाहे सफर जिंदगी का हो या गाड़ी का, बस खुशनुमा और पेशनुमा प्यारा सा, ताकि दिल भी कहेगा जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Jump.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जान

करें। कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। हमें नंबर वन।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: जबरदस्त है।

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.